क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, चोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो उस लासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: लासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए लासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: You are listening to 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: हेलो सुमान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136 138

0: Alfreton Road, Nottingham.
1: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
2: You are listening 97.1 FM.
3: You are playing. We are playing.
4: Fazan 97.1 FM.
5: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
6: 97.1 FM.
2: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bedford, Nottingham, NG7, 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तो मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप, फिल्मी गाने,

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल,
2: जबरदस्त हिट्स,
3: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
1: फजान 97.1 FM,
3: आई लव इट।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन.
6: It's commercial time.
7: हेलो नॉटिंगम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं. उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है. हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें. हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक. हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे. हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे. शुक्रिया.
8: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
9: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
10: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया. अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए.
9: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
10: मुगल बिल्डर्स?
9: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स. चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं.
10: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स.
9: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं.
10: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम. तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट.
9: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटनिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2
8: You are listening 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG3 5QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: This is a public service announcement.
8: The station
9: that plays
10: foot tapping music.
11: Huzzah 97.1 FM.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप। आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
13: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब। यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब। यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
12: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
13: You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
12: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात Faza 97.1 FM और DAB पर।
13: You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
12: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात Faza 97.1 FM और DAB पर।
13: You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
8: एक ऐसा सफर है, ये कैसी जुस्तजू, जमीन पे चलते हैं आसमान को देखते हैं, हो या मौला हक इलाही।

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 एफएम और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 एफएम एंड

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM।

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 एफएम और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 एफएम एंड डैब। यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 एफएम एंड

0: और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
1: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
0: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
2: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
3: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
8: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
7: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
8: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
7: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
9: You are listening 97.1 FM.
10: You are saying, we are playing
11: Fazan 97.1 FM.
12: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
13: 97.1 FM।
14: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB।
15: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर।
14: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB।
15: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर।
14: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB।
15: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर।
14: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: जीवन एक खेल है, इसे मुस्कुरा

डरता है तूफानों से, ये तो तेरी उड़ान का इम्तिहान है। सिर्फ सांसे चलने का नाम जिंदगी नहीं, गिरते हुए संभलने का नाम जिंदगी है। बिखरता है वही

कोई और निखार। ये कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार, तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर आ मगर चलती वही है जो चाहता है किरदार।

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 90।
2: जरा ये कमर्शियल तो सुन ले।
3: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
4: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
3: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
4: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
3: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
4: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
3: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम करदे ने। सोने ते सुहागा ए कि ओ हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी करदे ने।
4: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
3: हां जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
4: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
3: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bayesford, Nottingham, NG7, 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।
2: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
3: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर।
2: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: ये कैसा सफर है, ये कैसी जुस्तजू, जमीन पे चलते हैं, आसमान को देखते हैं, हो या मौला, हक इलाही।

0: are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
2: अगर तो

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें।

0: Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
1: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
2: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
1: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
2: मुगल बिल्डर्स?
1: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
1: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
2: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
1: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
4: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर।
4: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर।
4: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM.

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापिस नहीं आती।

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM.

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब। You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर।
1: You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर।
2: ये कैसा सफर है, ये कैसी जुस्तजू, जमीन पे चलते हैं, आसमान को देखते हैं, हो या मौला हक इलाही।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715-299-779 और विजिट अस एट
8: hayatweddings.co.uk।
9: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड एप।
10: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
9: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
10: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
9: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब। यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM।

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर।
1: You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर।

लिखी न कोई और लिखार, ये कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार। तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर आ मगर चलती वही है जो चाहता है किरदार।

मौला जाने लकीर क्या है, फकीर क्या है, मौला जाने। तू मांग उससे, मांग उससे लकीर से न मांग, लकीर बनाने वाले से मांग।

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।

You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
10: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापिस नहीं आती।

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: जीवन एक खेल है, इसे मुस्कुरा

डरता है तूफानों से, ये तो तेरी उड़ान का इम्तिहान है। सिर्फ सांसे चलने का नाम जिंदगी नहीं, गिरते हुए संभलने का नाम जिंदगी है। बिखरता है वही।

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात Faza 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: जीवन एक खेल है जिसे मुस्कुरा

डरता है तूफानों से, ये तो तेरी उड़ान का इम्तिहान है। सिर्फ सांसें चलने का नाम जिंदगी नहीं, गिरते हुए संभलने का नाम जिंदगी है। बिखरता है वही

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM।

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: ये कैसा सफर है, ये कैसी जुस्तजू, जमीन पे चलते हैं आसमान को देखते हैं, हो या मौला हक इलाही।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.

السلام عليكم. Hello, hello, hello. A very beautiful, breezy morning to all my listeners who are listening me right now. This is your host Zainab Fatma, और आप सभी सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो द डीवा डायलॉग सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM पे. तो लिसनर्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रेडियो फजा 97.1 FM ही है वो वाहिद प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलती है इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, साथ ही साथ अ लिटिल बिट एंटरटेनमेंट. सो डियर लिसनर्स, कोशिश करेंगे इस इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट के डोज को लेके चलेंगे अब से लेके ठीक 2 घंटे तक, यानी कि ठीक 10 बजे से लेकर ठीक 12 बजे तक हम और आप रहेंगे साथ साथ, मिलकर बनाएंगे आपके आज के इस दिन को, इस सुबह को और भी ज़्यादा खूबसूरत और भी ज़्यादा मेमोरेबल. जी तो लिसनर्स, अगर अभी तक आपने अपने इस दिन का आगाज़ नहीं किया तो इट्स द टाइम एंड इट्स द मोमेंट. अभी से चाय का एक मग उठाएं, बालकनी में खड़े हों और बाहर के खूबसूरत से व्यू को एंजॉय करें, साथ ही साथ रेडियो फजा 97.1 FM को ट्यून करें. हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अगर अभी तक आपने अपने इस दिन का आगाज नहीं किया सो आइए हम और आप मिलकर करते हैं अपने इस खूबसूरत से दिन का आगाज, करेंगे बहुत सारी अच्छी अच्छी मजे मजे की बातें. सो इसके लिए आपको हमें ट्यून करना होगा. ट्यून किस तरह से आप हमें कर सकते हैं, सिंपली radiofaza.com.uk है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, यानी इस वेबसाइट के थ्रू आप हमें ट्यून कर सकते हैं, सुन सकते हैं और हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं. साथ ही साथ बताती चलती हूँ, अगर आप चाहें तो आप हमारी एप्लीकेशन रेडियो फजा 97.1 FM को बआसानी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं. सिंपली आप अगर तो एप्पल यूज़र हैं तो आपने जाना होगा एप्पल स्टोर, लेकिन अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं सो सिंपली आपको जाना होगा गूगल स्टोर. वहां जाके आपको सर्च करना होगा रेडियो फजा 97.1 FM एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स एक पर्पल कलर का स्क्रीन आइकन आप सभी की स्क्रीन्स पर डिस्प्ले हो जाएगा. जी हाँ, यही है हमारी एप्लीकेशन. सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आप हमारी खूबसूरत आवाज को इस तरह से ट्यून कर सके और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें. साथ ही साथ लिसनर्स, आप सभी को बताती चलती हूँ, अगर आप हमारे इस शो में शामिल होना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपकी कीमती आरा को हम अपने शो में शामिल करें या फिर करें आपके साथ मजेदार सी गपशप, सो उसके लिए 01157100971 है हमारे स्टूडियो का लाइव नंबर, यानी कि मेरा और आपका रابطे का नंबर. इस नंबर के थ्रू आप मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं. अगर आपकी कोई फेवरेट रिक्वेस्ट है, आप चाहते हैं हम उसे शो में शामिल करें, इसके अलावा आप जिस टॉपिक पर बातचीत करना चाहते हैं या फिर आपके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है, आज के दिन के हवाले से आपके क्या गोल्स हैं, क्या प्लान्स हैं, क्या करने वाले हैं और क्या करने के इरादे रखते हैं, वो सभी बातें जो आप किसी ना किसी से शेयर करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छी कंपनी मिले, सो उसके लिए आप हमें अपने नाम के साथ कोई भी अच्छा सा प्यारा सा पैगाम लिखकर भेज सकते हैं. ज़रूर आपकी गुफ्तगू को शो में शामिल किया जाएगा और साथ ही साथ आपकी तमाम तरह रिक्वेस्ट को फुलफिल किया जाएगा. अब जरा बात करते हैं उन सभी लिसनर्स की जो इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि वो घर से बाहर निकले, क्योंकि हर दिन के स्टार्ट में हर एक इंसान के माइंड में एक ही तरह की हलचल चल रही होती है कि जल्दी से सुबह उठकर फ्रेश होकर तैयार हो जाऊं क्योंकि ऑफिस जाना है. या फिर अगर हम बाकी तरह के लोगों की बात करें तो बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी होती है जिनको डेली बेसिस पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज जाना होगा और बाकी के तमाम तर हजरात को ऑफिस वगैरह जाना होता है. सो अगर आप इस वक्त सफर में हैं या फिर अपनी डेस्टिनेशन को पहुंच चुके हैं और आप चाहते हैं कि आपका ये सफर बन जाए और भी ज्यादा खूबसूरत और भी ज्यादा हसीन, सो उसके लिए आप हमें फजा डैप के थ्रू ट्यून कर सकते हैं. जी तो
लिसनर, ये थे वो सभी तरीके जिनसे आप हमसे और हम आपसे जुड़ सकते हैं। सो ये तमाम तरीके मैंने आप सभी से शेयर कर दिए हैं। सो इसी तरह से अपने होने का, अपनी मौजूदगी का एहसास हमें दिलाते रहिए और हमें बताते रहिए कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे, अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं मगन होंगे, और अगर कहीं ना कहीं मगन नहीं होंगे तो इस वक्त आप सभी क्या माइंड इस चीज को प्रोसेस कर रहा होगा कि अच्छा आज का ये जो नया दिन शुरू हुआ है इस दिन को किस तरह से यूटिलाइज किया जाए और आज के दिन में क्या क्या गोल्स हैं जिनको फुलफिल किया जाए, पूरा किया जाए। सी तो लिसनर्स, घबराने की कोई बात नहीं क्योंकि आई नो हम सभी के माइंड में एक डे के स्टार्ट में एक बहुत सी हलचल चल रही होती है क्योंकि बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े होते हैं जिन्हें हमने कंप्लीट करना होता है। लेकिन अगर हम अपने दिमाग को टेंशन और कश्मकश का शिकार कर लेंगे तो कोई भी काम हमारा सेटल नहीं हो पाएगा। सो इसके लिए ज़रूरत है माइंड को रिलैक्स करने की, थोड़ा सा ठंडा करने की। सो जिस तरह से एक अच्छे खूबसूरत दिन का आगाज़ होता है एक अच्छे हेल्दी मील के साथ, इसी तरह से ठीक एक नए दिन का आगाज के लिए ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को फ्रेश करें, और माइंड को ज़रूरत होती है फ्रेश होने के लिए एनर्जेटिक वाइब्स की। सो डियर लिसनर, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज है जुमातुल मुबारक, यानी कि वीक का वो दिन जो कि मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा कंसीडर किया जाता है कि इस डे आप अपने दुनियावी कामों को थोड़ा सा साइड पर करते हैं और उस मकसद की जानिब सोचते हैं जिस मकसद के लिए हम और आप इस दुनिया में आए हैं। सो कुछ इसी तरह से शो में भी बहुत सारी गपशप करेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, कुछ आपकी बातें सुनेंगे और कुछ आपको अपनी बातें सुनाएंगे। सो जी लिसनर, शो का बाकायदा आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये खूबसूरत सा दिल को छू लेने वाला कलाम जो कि आपके मूड को इंस्टेंटली बूस्टअप करेगा और आपके दिन को एनर्जेटिक बनाएगा। तो आइए लिसनर्स मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा कलाम जिसे हमारी वेरी फेमस सूफी सिंगर आबिदा परवीन साहिबा ने अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में गाया है। चलिए आइए इसको एंजॉय करते हैं।

सीधे लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इस खूबसूरत से कलाम को जिसे आफ्ताब परवीन साहिबा ने अपनी जाज पे नजर आवाज में गाया है, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इसको बहुत पसंद किया होगा। अगर इस तरह से आपका भी कोई फेवरेट कलाम है या आप चाहते हैं कि आपकी भी कोई फेवरेट चीज़ हम शो में शामिल करें, सो इसके लिए आप सिंपली हमें बता सकते हैं। आपका और मेरा रابطے का नंबर है 0115710971। इस नंबर के थ्रू आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, आपकी रिक्वेस्ट को ज़रूर फुलफिल किया जाएगा। जैसा कि लिसनर्स आप सभी को मालूम है, आज है फ्राइडे यानी जुमातुल मुबारक, हफ्ते का सबसे अफसल और बरकत वाला दिन। इस मुबारक दिन की मुनासबत से मैंने सोचा कि क्यों ना जिस तरह से हम डेली बेसिस पर एक खूबसूरत कलाम आप सभी से शेयर करते हैं, जिस तरह से हम डेली बेसिस पे आप सभी के साथ एक खूबसूरत सा मोटिवेशनल सा कोट शेयर करते हैं, सो आज के दिन के हवाले से, आज के दिन की मुनासबत से आप सभी के साथ एक नहायत ही खूबसूरत, मीनिंगफुल और सिंपल सा कोट शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये कोट काफी अच्छा लगेगा। सो आज का दिन का हमारा कोट कुछ यूं है कि फ्राइडे इज द मिरर ऑफ योर वीक, रिफ्लेक्ट पीस, वाइप अवे द डस्ट ऑफ योर पास्ट मिस्टेक्स and istighfar and step into the weekend with a clean heart. See, so listeners, agar aap gaur kare to is ek line mein hi nihayat hi dil ko chhu lene wali aur khoobsurat baat छुपी हुई है, जिसका सिंपल सा मतलब कुछ यूं है कि जुमा आपके पूरे हफ्ते का एक आईना होता है, यानी कि फ्राइडे के दिन आप एक ऐसे मिरर के सामने जाते हैं जहां आपको आपके पूरे हफ्ते का अक्स दिखाई देता है। सो सुकून को जाहिर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें, नेक कामों में अपने इस दिन को गुजारें और जो कुछ भी गलती कोताहियाँ, जैसा कि आप में हम सब इंसान हैं और इंसान हताओं का पुतला होता है और गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं, एंड आई नो हम सभी से भी होती हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे डेली बेसिस पर समटाइम्स कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हमसे अनजाने में भूल चूक में हो जाती हैं, और कुछ ऐसे भी होती हैं जिनके बारे में हमें मालूम होता है बट स्टिल हम कर देते हैं। सो उन तमाम तर गलतियों पर, उन तमाम तर कोताहियों पर पशेमा होने से बेहतर ये है कि आप आज के दिन यानी फ्राइडे के दिन अपने आपको बदलें, खुद को चेंज करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, और जो आपसे हो चुका सो हो चुका। जो लोग हमेशा पास्ट में देखते रहते हैं वो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, तो अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें, आपसे जो कुछ हो चुका है उसको इसी मोमेंट में स्टॉप कर दें और आज के दिन से ये अहद करें कि मैं ये काम, ये गलती दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। क्योंकि जब आप अपना ये मोटिव बना लेंगे कि अच्छा ये गलती चलो मुझसे हो गई है और मैं अपनी गलती को तस्लीम करता हूँ और मैं ये अहद करता हूँ कि अब आने वाली जो नेक्स्ट मेरी ज़िंदगी होगी उसमें मैं ये मिस्टेक रिपीट नहीं करूँगा, सो ऑटोमेटिकली ये पहला स्टेप होता है जिसमें आप अपने गलतियों के अजाले की तरफ बढ़ते हैं और इस तरह से करके आप अपने आप को बदल सकते हैं और अपने आने वाले अगले वीक को मजीद अच्छा बना सकते हैं। जैसे कि इसने आप सभी को मालूम है कि मंडे से लेकर थर्सडे तक हम सब दुनिया की भागदौड़ में इतना स्ट्रेस्ड रहते हैं, यहाँ आना, वहाँ जाना, डेली बेसिस पे काम करना, ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, फिर घर आकर भी बहुत सारे कामकाज होते हैं, कुछ ऑफिस के पेंडिंग काम होते हैं जिन्हें हम घर आके कंप्लीट करते हैं और भी कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमारी पर्सनली निजी ज़िंदगी से रिलेटेड होते हैं जिनका भी करना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो उस सब में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि हम ये चीज़ सोचें कि अच्छा आया आज के दिन हमने क्या काम किया है, क्या चीज़ ठीक की है, क्या चीज़ गलत की है। लेकिन फ्राइडे का दिन जिसे मैं पर्सनली समझती हूँ एक स्पिरिचुअल डे, जिस दिन में हमारे पास हम थोड़ा सा टाइम साइड पर करते हैं, अलग से निकालते हैं, जहाँ हम बैठकर इस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि अच्छा जो हमारा गुज़िश्ता हफ्ता था वो किस तरह से गुजरा, हमने किस मोमेंट में, किस पॉइंट में क्या क्या काम किया, क्या काम ठीक थे, क्या काम गलत थे, यानी कि हम खुद का थोड़ा सा मुहासबा करते हैं और फिर हमारी पूरी कोशिश यही होती है कि हम जो हमसे लास्ट वीक में गलतियां हो चुकी हैं उनको दूर करें। सो उनके लिए तो ज़रूरी ये है कि आप सच्चे दिल से तौबा कर लें और इस
चीज़ का अहद करें कि आप दोबारा उस चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे। साथ ही साथ जैसे कि फ्राइडे है, सो फ्राइडे के हवाले से जो अज़कार हमें करने चाहिए जो कि हमारी नेकियों में इजाफा कर सकते हैं, उसमें यह है कि हम आज के दिन कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें, कोशिश करें कि जुमा की नमाज़ पढ़ें, जुमा की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद सूरत काफ़ की तिलावत करें और अल्लाह के हुजूर ढेर सारा इस्तिग़फ़ार करें। तो इससे ये होगा कि हमारा दिल पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा, और जब हमारा दिल साफ़ हो जाएगा तो इसमें किसी भी तरह की बुराई, बुरे कामों की जगह नहीं रहेगी।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
1: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
1: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
1: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Discover the authentic taste of the

0: on 0759315069. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
1: You are listening 97.1 FM.
2: You are playing. We are playing. Fazan 97.1 FM.
3: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
4: 97.1 FM।
5: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात।

वेलकम बैक लिसनर्स, वंस अगेन एक बार फिर से मैं हूं आप सभी की होस्ट ज़ैनब फातिमा। आप सभी को खुशामदीद करती हूं द डीवा डायलॉग, जो कि ऑन एयर होता है सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM में। चलो लिसनर्स, ये मुख्तसर सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन उन सभी लिसनर्स के लिए जिन्होंने अभी अभी हमें ट्यून किया है। आप सभी को खुशामदीद करती हूँ शो में, और एक बार फिर से बता देती हूँ 01157100971 ये है हमारे स्टूडियो का लाइव नंबर, यानी इस नंबर के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे शेयर कर सकते हैं। सो इंतज़ार किस बात का है, अपनी कीमती आरा का इजहार कीजिए हमसे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी तमाम तर रिक्वेस्ट को ज़रूर फुलफिल करें, और उन तमाम तर बातों को जो आप सुनना चाहते हैं या आप सीखना चाहते हैं उनको शो में शामिल करें। चलो लिसनर, जैसा कि ब्रेक से पहले हमने बात की आज के दिन के हवाले से, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के दिन का खूबसूरत सा कोट अच्छा लगा होगा, और उम्मीद यही है कि ये आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई पॉजिटिव असरात को मरतब करेगा। सो जी, बारी आती है अब हमारे शो के उस सेगमेंट की जिसका मुझे आप सबको स्पेशली फीमेल्स को रहता है बेसब्री से इंतज़ार। क्यों? क्योंकि इस सेगमेंट में हम बात करते हैं लेडीज़ फेवरेट टॉपिक द कुकिंग, क्योंकि आई थिंक सो बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जिन्हें कुकिंग करना एज अ हॉबी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। आई नो कुछ होती हैं ऐसी भी कि जो बस खाने में ज़्यादा ध्यान देते हैं इंस्टेड ऑफ कुकिंग, बट मुझे पर्सनली खाना पकाना बहुत अच्छा लगता है, और सबसे ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगता है कि जब मैं कुछ नया ट्राई करूँ या फिर डिफरेंट इन्ग्रीडियंट्स को यूज़ करूँ। सो मैं कोशिश करती हूँ कि डेली बेसिस में आप सभी के लिए ऐसी रेसिपीज़ लेकर आऊँ जो बिल्कुल सिंपल सी हों, ऑथेंटिक हों, और साथ ही साथ हम उन रेसिपीज़ में ऐसे इन्ग्रीडियंट्स को शामिल करें जो ईजिली अवेलेबल हों, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आप उन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। सो जी, हमेशा की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए कुछ ऐसी ही रेसिपीज़। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज है फ्राइडे, और फ्राइडे के हवाले से मोस्टली एशियन फैमिलीज में ये चीज़ फेमस होती है कि फ्राइडे इज़ द डे ऑफ बिरयानी। सो आज हम बनाने जा रहे हैं बिरयानी, बट एक न्यू डिफरेंट स्टाइल से, डिफरेंट फ्यूजन से। सो वेल, उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगेगा।

बिना टाइम वेस्ट किए आप सभी से शेयर करती हूँ आज की हमारी हैदराबादी दम बिरयानी के इंग्रेडिएंट्स। जल्दी से आप अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए या फिर अगर आपके पास नोटबुक नहीं है सो कोई भी कॉपी पेंसिल यूज कर सकते हैं ताकि आप इन सभी इंग्रेडिएंट्स को नोट कर ले और आपसे कुछ भी मिस आउट ना हो जाए।

जी तो लिसनर्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स हमें दरकार हैं, इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले चिकन 1 kg, बोनलेस चिकन आपने यूज़ करना है और आपने उसे बड़े बड़े क्यूब्स में कट करके रख लेना है। अच्छा, हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है योगर्ट, जिसे हम शामिल करेंगे 1.5 cup, यानी 1 full cup एंड 1/2 cup। अच्छी तरह से इसे मिक्स करके रख लें ताकि हमारा जो दही है इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल थिन भी ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो। हमारा अगला इंग्रेडिएंट है जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 tablespoons। साथ ही साथ हम शामिल करेंगे फ्राइड अनियंस 1.5 cup, जिन्हें हम अच्छी तरह से छोटा छोटा कट करके क्रश करके रख लेंगे। इसी तरह साथ ही साथ अब अगले इंग्रेडिएंट्स की जानिब बढ़ते हैं। सो हम इस रेसिपी में शामिल करेंगे हरी मिर्चें 5 से 7 अदद, हरा धनिया और पुदीना बिल्कुल बारीक कटा हुआ हम 1 से 2 cup यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ आगे हम यूज़ करेंगे एक मसाला, जिसको बनाने के लिए हम बहुत सारे मसालों को आपस में मिक्स करेंगे। सो वो सभी आपसे शेयर करती हूँ। जी तो स्पाइसेस की जहाँ हम बात कर रहे हैं, तो वहीं शामिल होगा लाल मिर्च पाउडर 2 tablespoons, हल्दी पाउडर 1.5 tablespoons, नमक 1.5 tablespoons, हैदराबादी बिरयानी मसाला पाउडर 2 tablespoons, लीमू का रस 2 tablespoons एंड लास्टली नमक हस्ब ज़रूरत हस्ब ज़ायका। लेकिन मैं यहाँ इस रेसिपी में शामिल करने जा रही हूँ 2 tablespoons नमक, जिसे मैं पहले शामिल करूँगी और फिर मैं लास्ट में दोबारा से चेक कर लूँगी। अगर मुझे ऐसा फील हुआ कि नमक थोड़ा सा कम है, क्योंकि मैं नमक ज़्यादा पसंद करती हूँ, सो मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूँगी। ये टोटली ऑप्शनल है, ये आप पर डिपेंड करता है आपको खानों में किस तरह से स्पाइसेस पसंद हैं, आपको नमक ज़्यादा पसंद है या आपको नमक कम पसंद है।

अब बारी आती है हमारे बाकी के इंग्रेडिएंट्स की। तो इस रेसिपी में शामिल होंगे बासमती राइस 750 ग्राम्स, जिन्हें हमने सबसे पहले अच्छे से धो के रख लेना है और 30 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखना है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि जब भी हम बिरयानी बनाते हैं, पुलाव पकाते हैं या कुछ भी चावलों से रिलेटेड बनाते हैं, सो हम चावलों को पहले अच्छे से धोकर भिगो के क्यों रखते हैं। सो मैंने सोचा था कि आज के शो में मैं आप सभी की इस क्वेश्चन का आंसर करूंगी। सो बेसिकली जब भी हम चावल लेते हैं, उनको अच्छे से धोते हैं, धो के भिगो के रखने का मकसद ये होता है कि इससे चावल हमारे सॉफ्ट हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं और चावलों को जो एक्स्ट्रा वाटर की ज़रूरत होती है वो अपने वाटर का इंटेक उस पानी से कर लेते हैं। और फिर जब हम चावलों को पकाते हैं सो वो पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लेते और इजीली पक जाते हैं और बहुत अच्छे से गलते हैं। सो इन्हीं तमाम चीज़ों की वजह से हम चावलों को हमेशा पकाने से पहले 20 से 30 मिनट्स के लिए भिगो के रखते हैं। अब बारी आती है खड़े मसालों की, जो कि हर रेसिपी की जान होते हैं, लेकिन जहां हम बात कर रहे हैं हैदराबादी दम बिरयानी की, तो हैदराबादी दम बिरयानी सबसे ज़्यादा फेमस ही अपने खड़े मसालों की वजह से होती है। सो इसमें शामिल होगा तेज़पत्ता 2 अदद, दालचीनी 1 इंच, लौंग 4 अदद, हरी इलायची 4 अदद और जीरा 1 टेबल स्पून। सो ये थे वो तमाम तर खड़े मसाले जिन्हें हम आज इस बिरयानी में शामिल करेंगे। लास्ट में पुदीने का पत्ते जो कि गार्निशिंग के लिए होंगे ऊपर से शामिल करेंगे ताकि वो रेसिपी को दिखने में खूबसूरत, आउट क्लास और प्रेजेंटेबल बनाए। सो दे लिसनर्स, ये तो थे सारे इंग्रेडिएंट्स जो कि मैंने आप सभी से शेयर कर दिए, लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपसे मिस आउट हो चुका है या आपको समझ नहीं आया क्योंकि मैं थोड़ा तेज बोलती हूँ, सो उसके लिए 01157100971 है मेरा और आपका रابطے का नंबर, सो जो कि हमेशा ओपन रहता है मेरे तमाम तर लिसनर्स के लिए, तमाम तर चाहने वालों के लिए। सो आप इस नंबर के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, सिंपली टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्यूरी को ज़रूर दूर करूँगी और आपको रेसिपी मज़ीद अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूँगी। सो डियर लिसनर्स, होप सो आप सभी ने इंग्रेडिएंट्स नोट कर लिए होंगे। अभी वक्त हुआ है शो में एक खूबसूरत सा जाज़्बे नज़र कलाम शामिल करने का। आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा कलाम।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी वो भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baysford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंगम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तुम मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप फिल्मी गाने,

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।
2: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
3: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर।
2: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.

वेलकम बैक लिसनर्स, एक बार फिर से आप सभी की होस्ट ज़ैनब फातिमा खुशामदीद करती हूँ आप सभी को द डीवा डायलॉग सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM में।

लिसनर्स, थर्ड स्टेप हमारा कुछ यूँ था कि अब आपने ये करना है कि सबसे पहले एक बड़ा सा पैन ले लेना है, प्याज को अच्छे से गर्म कर लेना है। प्याज जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाए आपने शामिल करना है उसके अंदर वही मैरिनेटेड चिकन। अच्छी तरह से उसे 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है, इतना पकाना है कि जो हमारा चिकन है वो अच्छी तरह गल जाए अपने ही मसालों के अंदर। आपको कोई भी एक्स्ट्रा मसाले नहीं शामिल करने, बस आपको वो तमाम तर गर्म मसाले शामिल कर देने हैं और थोड़ा सा पानी जाके आपका जो गोश्त है वो गल सके। अच्छा, गरम मसाले क्या काम करते हैं? गरम मसाले खुशबू का काम करते हैं, रंगत का काम करते हैं और रेसिपी को खूबसूरत जानदार बनाते हैं। सो डियर लिसनर्स, जैसे ही आपका ये चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाए, अच्छी तरह से गल जाए, सो लास्ट हमारा स्टेप क्या था? लेयरिंग का, जिसमें हम अच्छे से चावलों की और चिकन की लेयर्स बनाते हैं और इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि कहीं भी चावल ओवर कुक ना हो। सो जी, 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर हमारी ये मज़ेदार सी ऑथेंटिक हैदराबादी बिरयानी तैयार हो गई। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे अपनी फैमिली के साथ खाएं, लव्ड वन के साथ खाएं या फिर अपने दोस्तों के साथ इंजॉय करें। सो वेल, ये थी हमारी आज की द स्पाइस किचन की मेन रेसिपी उन सभी लिसनर्स के लिए जो कि मीट लवर हैं या फिर उनको मीट खाना बहुत पसंद है। अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली रेसिपी की जानिब, जो कि है उन सभी लिसनर्स के लिए जिन्हें गोश्त बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, क्योंकि हम इस वक्त जिस दुनिया में बिलोंग कर रहे हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु आर लिसनिंग अस राइट नाउ, जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और भी इसके अलावा यूके और दुनिया में जहाँ कहीं से भी हमारे लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, उन सभी लिसनर्स के लिए आई नो बहुत से ऐसे लोग होंगे कि जिन्हें चिकन बिल्कुल पसंद नहीं होगा और वो टोटली वेज प्रेफर करते होंगे। सो आप सभी के लिए मैं लाई हूँ आज वेज में भी एक ऐसी रेसिपी जो कि बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है। और बाज़ औक़ात हम फैंसी खाने तो खाते रहते हैं, जैसे कि कल हमने मंचूरियन बनाया, एग फ्राइड राइस बनाए, चिकन पामिजान बनाया, इसके अलावा चिकन चाउमीन बनाया और तो और वेजिटेबल चाउमीन। तो कभी कभी हमें थोड़ा देसी भी खाना चाहिए, कुछ ऐसा खाना भी खाना चाहिए जो हमें हमारी रूट से मिलाए। वो कहा जाता है कि हम चाहे कहीं पर भी रहते हों, चाहे हम इंडिया में रहते हों, बांग्लादेश में रहते हों या फिर श्रीलंका में, हम दुनिया के कहीं भी किसी भी कोने में चले जाएं, चाहे फ्रांस, लंदन, यूके, यूरोप, लेकिन इंसान कभी भी अपनी रूट से अलग नहीं होता। सो बाहर के वलेती खाने खा के इंसान का समटाइम्स बहुत दिल करता है कि कुछ ऐसा खाया जाए जो बिल्कुल देसी हो, बिल्कुल हमारी रूट से जुड़ा हो और टोटली ऑथेंटिक हो। सो आप सभी लिसनर्स के लिए लेकर आई हूँ आज मैं मज़ेदार सी दाल माश। बिना वक्त ज़ाया किए आप सभी से इंग्रेडिएंट्स को शेयर करती हूँ। सो जल्दी से आप अपनी नोटबुक ओपन कर लें, अगर आप कोई आगे पीछे का काम कर रही हैं सो माई लवली डीवाज थोड़ी देर के लिए उस काम को स्किप कर दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी से शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी अच्छी मज़ेदार ऑथेंटिक रेसिपी जिसके इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल हैं, बहुत बेसिक हैं। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आएंगे और आपको सुपरमार्केट भी जाने की ज़रूरत नहीं। सो डियर लिसनर्स, इंग्रेडिएंट आप सभी से शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले शो में शामिल करते हैं एक खूबसूरत सा जासब नज़ब कलाम, ताकि आपकी सोल भी सुकून महसूस करे। और जैसा कि आज फ्राइडे है तो इस हवाले से अच्छा लगता है जब हम ऐसे अच्छे से कलाम सुनते हैं जिससे हमारी सोल खुश होती है, माइंड सेट रिलैक्स होता है और थोड़ा अच्छा फील होता है। आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा कलाम।

वेल लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इस खूबसूरत से कलाम को ज़रूर इंजॉय किया होगा। और आप सभी के साथ भी क्या ऐसा फील होता है कि जब कभी आप कोई भी खूबसूरत सा कलाम सुनते हैं सो आपको एक रूहानी सुकून महसूस होता है? अच्छा, पर्सनली मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है कि जब भी मैं कोई खूबसूरत दिल को छू लेने वाला कलाम सुनती हूँ तो मुझे एक स्पिरिचुअल एहसास फील होता है। मुझे ऐसे लगता है कि मतलब जैसे होता है ना कि हम सब के साथ कि आपको अंदरूनी तौर पर सुकून महसूस होता है, कुछ अच्छा अच्छा सा लग रहा होता है, बस कुछ इसी तरह की कैफियत और फीलिंग मैं महसूस करती हूँ। अगर तो आप सभी भी ऐसी फीलिंग्स महसूस करते हैं या आपके साथ भी ऐसा होता है तो लाजमी मुझसे शेयर करिएगा। 0115710971 है मेरा और आपका रबते का नंबर, यानी इस नंबर के थ्रू हम कर सकते हैं बहुत सारी बातें। कुछ आपकी बातें सुन सकते हैं और कुछ आपको अपनी बातें सुना सकते हैं, सो लाजमी मुझसे शेयर करिएगा। चलो तो लिसनर्स, अब जरा स्पाइस किचन में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली रेसिपी की जानिब। सो फर्स्ट रेसिपी हमारी थी उन सभी लिसनर्स के लिए जो कि मीट लवर हैं, अब बारी आती है उन तमाम तर लिसनर्स की जो कि वेज लवर हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी दाल मखनी और इसे हम बनाएंगे। आई नो आप सभी को रेसिपी तो मालूम होगी, लेकिन रेसिपी में ज़रा सा ट्विस्ट ये है कि आज हम इस रेसिपी को बनाएंगे ज़रा मुनफरद, ज़रा डिफरेंट अपने स्टाइल में। सो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स आप सभी से शेयर कर देती हूँ। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए ब्लैक काली मसूर की दाल, जिसे हम सिंपली कहते हैं, 1 कप, जिसे हमने रात भर भिगो के रख देना है, ठीक है। साथ ही साथ अगली हमें चाहिए, अगला इंग्रेडिएंट है हमारा राजमा, जिसे हम किडनी रेड बीन्स भी कहते हैं, इसे हम शामिल करेंगे 1 कप, जिसे हम अगेन रात भर भिगो के रख देंगे। टमाटर की प्यूरी 1 कप, मक्खन 4 टेबलस्पून, फ्रेश क्रीम 1.5 कप, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। अब बारी आती है तमाम तर स्पाइसेस की। अच्छा, इस रेसिपी में जो स्पाइसेस शामिल होने जा रही हैं वो भी आप सभी से शेयर करती हूँ। सो सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1.5 टेबलस्पून यानी 1 फुल टेबलस्पून एंड 1.5 टेबलस्पून, और नमक हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका। सो ये तो थे हमारे सभी इंग्रेडिएंट्स जो कि मैंने आप सभी से शेयर कर दिए। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं प्रोसीजर की जानिब। सो सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में भिगोई हुई काली दाल, राजमा और नमक, इन दोनों को शामिल करके इस पे हम शामिल करेंगे साथ ही साथ 4 कप पानी और इसे 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। याद रखिएगा, जब भी आप प्रेशर कुकर के अंदर कोई भी इंग्रेडिएंट शामिल करते हैं सो साथ ही साथ आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि आपकी सीटी की आवाज़ कब आती है। सो जैसे ही आपकी सीटी की आवाज़ आना शुरू हो जाए सो इट्स मीन कि अब आपकी जो भी चीज़ है, चाहे वो दाल है या फिर मीट है या कुछ भी जो आप कुक कर रहे हैं इसके अंदर, वो अब पक चुका है। सो बस इसी तरह से 5 से 7 मिनट के लिए हम अच्छी तरह से दाल को बॉईल कर लेंगे, फिर चम्मच के नीचे से दाल को हल्का सा मैश कर देंगे। यानी सबसे पहले हमने दाल बॉईल करना है, फिर उनको अच्छे से मैश कर देना है। अब बारी आती है हमारे तड़के की। सो सबसे पहले हम एक कढ़ाही ले लेंगे जिसपे 2 टेबलस्पून बटर, 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। इसे अच्छे से गर्म होने देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। फिर बारी आती है जिंजर गार्लिक पेस्ट की, इसे भी हम बीच में शामिल कर देंगे और मज़ीद 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे वो तमाम तर स्पाइसेस जो कि इंग्रेडिएंट्स में मैंने आप सभी को लिखवाए थे। सो टमाटर की प्यूरी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इन दोनों इंग्रेडिएंट को शामिल कर देंगे। इन्हें तब तक पकाएंगे कि जब तक आपका ऑयल बिल्कुल अलग ना हो जाए। अब बारी आती है इस तड़के में हमारी उबली हुई दाल, यानी कि ब्लैक दाल और साथ ही साथ राजमा, इन्हें शामिल करने की। सो हम इनको शामिल कर देंगे, थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे और इसे हल्की आंच पर 20 से 25 मिनट के लिए पकने देंगे। दाल जितनी आहिस्ता आंच में पके उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार, उतनी ही ज़्यादा डिलिशियस होती है और उतनी ही ज़्यादा क्रीमी बनती है। सो आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है, आंच को बिल्कुल आहिस्ता रखना है और 20 से 30 मिनट के लिए इसे अच्छे से पकाना है।
ऊपर से अब हम इसमें शामिल करेंगे फ्रेश क्रीम और बटर, ताकि जो हमारी दाल है वो और भी ज़्यादा डिलिशियस और भी ज़्यादा टेम्पटिंग लगे। सो डियर लिसनर्स, 20 से 25 मिनट के बाद आप चूल्हा बंद कर दें और आपकी मज़ेदार सी डिलिशियस सी दाल हो गई तैयार। यह थी हमारी आज की सेकेंड रेसिपी। वेल, उम्मीद करती हूँ आपको फर्स्ट रेसिपी के साथ साथ हमारी आज की सेकेंड रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। कोशिश मेरी हमेशा से यही होती है कि मैं बहुत सिंपल करके चीज़ों को बनाऊँ, बहुत सादा इन्ग्रीडियंट्स को यूज़ करूँ, ताकि आप सभी को कोई भी दिक्कत ना हो, इजीली चीज़ें घर पर अवेलेबल हो और कुछ भी बाहर से ख़रीदना ना पड़े। अच्छा, अब हमारी दाल तो हो गई तैयार। अब इसको गार्निश करने के लिए हम इसमें हरा धनिया यानी कि मिंट लीव्स ऊपर से ऐड कर देंगे, हल्का सा नींबू छिड़क लें तो इसका मज़ा और भी ज़्यादा दुबाला हो जाएगा। सो बस, आज का दिन है, फ्राइडे है और फ्राइडे हमेशा से डेडिकेट किया जाता है एशियन फैमिलीज़ में देसी खानों को। सो मैं तो यही कहूँगी कि आज ही इन रेसिपीज़ को ट्राई करिएगा। ट्राई करने के बाद मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगी, और ऐसे मज़े मज़े की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए आप मुझे डेली बेसिस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिंपली हमारे नंबर पर जाकर आप मुझे बता सकते हैं कि आपको फ़लाँ रेसिपी सीखने का शौक़ है और आप चाहते हैं कि उस रेसिपी को मैं आप सभी से शेयर करूँ। सो एक बार फिर से बताती चलती हूँ कि हमें यानी कि रेडियो फ़ज़ा 97.1 FM को ट्यून करने के लिए आप सिंपली radiofaza.com.uk की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। ये हमारी वाहिद ऑफिशियल वेबसाइट है जिस वेबसाइट के थ्रू से आप हमें ट्यून कर सकते हैं और अपने खूबसूरत से दिन को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। साथ ही साथ बताती चलती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप इसी तरह से हमारे साथ इन टच रहें, आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें और आप ये जान सकें कि आपका फेवरेट आरजे कब, किस वक्त, किस जगह, किस शो में आ रहा है, इसके लिए आपको करना कुछ यूं होगा कि हमारी एप्लीकेशन रेडियो फ़ज़ा 97.1 FM को इंस्टॉल करना होगा। सो बिना देरी के, बिना वक्त ज़ाया किए जल्दी से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें और आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें। चलो लिसनर्स, मैं हमेशा से कहती हूँ कि वही रिश्ते, वही ताल्लुकात हमेशा पायदार होते हैं, देर पास चलते हैं, जहाँ आपकी बॉन्डिंग टू साइडेड हो। अगर आपकी बॉन्डिंग वन साइडेड होगी, यानी कि आप उसमें एफर्ट्स पुट करते चले जाएंगे, लेकिन सामने वाला उस तरह से आपको नहीं देख रहा होगा, उस तरह से आप में नहीं इन्वेस्ट कर रहा होगा, सो वो ताल्लुकात ज़्यादा अरसा नहीं चलते, बिल्कुल फीके बेजान हो जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते ख़त्म हो जाते हैं। सो डियर लिसनर्स, मैं चाहती हूँ कि माई लवली डिवास और मेरे सभी मेल लिसनर्स, आपका और मेरा साथ भी हो कुछ इस तरह से, जिसपे आपको मुझसे कुछ भी कहने के लिए सोचना ना पड़े और मुझे भी आपसे गुफ्तगू करने के लिए बिल्कुल भी सोचना ना पड़े। सो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमें अपना फीडबैक देते रहें, इसी से हमें अंदाज़ा होगा कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है और इस हवाले से आपका क्या कहना है। तो जी लिसनर, जैसा कि आज फ्राइडे भी है, सो फ्राइडे का दिन जहां हम खानों की तो बात कर ही रहे हैं, वहीं जो आज के दिन का सबसे खूबसूरत, सबसे मेन मकसद है वो ये है कि आपने अपना, अपने गॉड के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है। सो आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप अपने दिन को अच्छे कामों में सर्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करें, नमाज पढ़ें, इबादत करें और अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करें और मिल बैठ कर साथ में खाना खाएं, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता, अगला आने वाला सूरज हम देखें या ना देखें, इसका क्या भरोसा। सो अपने आज में ही हमने जीना है और अपने आज को ही हमने खूबसूरत बनाना है। डियर लिसनर्स, इसी खूबसूरत सी बात के साथ अभी शो में भी हमारा वक्त हुआ चलता है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। आई नो समटाइम्स बातें करते करते मुझे बिल्कुल एहसास नहीं होता और कमर्शियल ब्रेक सर पर आ खड़ी होती है। कमर्शियल ब्रेक पर जाने का बिल्कुल भी दिल तो नहीं करता, लेकिन जाना पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी की गाड़ी को और शो की गाड़ी को अगर हमने आगे बढ़ाना है, सो कमर्शियल ब्रेक पर तो जाना पड़ेगा। सो डियर लिसनर्स, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब। आप सभी से मुलाकात होगी कमर्शियल ब्रेक के उस पार, तब तक के लिए हमारे साथ यानी रेडियो फ़ज़ा 97.1 FM के साथ जुड़े रहिए और हमें ट्यून करते रहिए। स्टे ट्यून विद अस।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या

वेलकम बैक लिसनर्स, एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ आप सभी को आपके फेवरेट शो द टीवा डायलॉग सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 एफएम में। तो लिसनर, जैसा कि ब्रेक से पहले मैं बात कर रही थी कि अगर आपकी भी कोई खूबसूरत सी रिक्वेस्ट है, आप चाहते हैं कि हम उसे शो में शामिल करें, सो आप ज़रूर बताइएगा, शो में ज़रूर शामिल करेंगे। सो साथ ही हमारे पास एक खूबसूरत सी रिक्वेस्ट आ चुकी है जिसे अभी हम शो में शामिल करने जा रहे हैं। सो ये हमारे एक प्यारे से लिसनर की रिक्वेस्ट है, वो चाहते हैं कि हम इस कलाम को शो में शामिल करें। सो डोंट वरी, आपकी रिक्वेस्ट ज़रूर फुलफिल की जाएगी और अभी शो में शामिल करते हैं ये खूबसूरत सा कलाम। आइए आप और मैं मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत कलाम।

कोई और निखार। ये कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार, तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर आ मगर चलती वही है जो चाहता है किरदार।

जी तो मेरे प्यारे लिसनर्स, एक बार फिर से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये खूबसूरत सा कलाम बहुत अच्छा लगा होगा और इस तरह की और भी मज़े की अपनी रिक्वेस्ट ज़रूर मुझसे शेयर किया करें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी सभी रिक्वेस्ट को पूरा करूँ। जी तो लिसनर, जैसा कि आज है फ्राइडे जुमातुल मुबारक, जिसके हवाले से हमने गुफ्तगू भी की, और एक बार फिर से आज के खूबसूरत से कोड को रिपीट कर देती हूँ उन सभी लिसनर्स के लिए जिन्होंने हो सकता है हमें लेट ट्यून किया हो। सो डियर लिसनर्स, आज का हमारा खूबसूरत सा कोड ये कहता है कि ज़िंदगी में हम इंसान बहुत सी गलतियाँ करते हैं, बहुत सी कोताहियाँ करते हैं। ज़िंदगी नाम ही है गलतियों और कोताहियों का, और इंसान हमेशा से कहा जाता है कि हताओं का पुतला है। सो जी लिसनर्स, जो तो गलतियाँ हमसे हो चुकी हैं या हमने माजी में कर ली हैं, उन पर पछतावा होने से बेहतर ये है कि आज में जहाँ हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहाँ हम खड़े हैं, उसको खूबसूरत बनाया जाए, उसको बेहतर बनाया जाए। हम अपने आप को किस तरह से खूबसूरत और बेहतर बना सकते हैं कि हम आज से खुद पर तवज्जो दें, अपने अमल को बेहतर बनाएं और कोशिश करें कि ये ज़िंदगी हमें जिस मकसद के लिए मिली है, हम अपने उस मकसद पर कायम रहें, बरकरार रहें और अपने इस मकसद की जानिब रवा दवा रहें। जैसा कि आज फ्राइडे है, यानी कि वीक का सबसे खूबसूरत, सबसे अफसल दिन, फ्राइडे के हवाले से कहा जाता है कि फ्राइडे में एक घड़ी ऐसी होती है जहां आप अपने रब से जो भी दुआ करते हैं, आपकी वो दुआ लाजमी कबूल होती है। और आज तो वैसे भी अगर हम इस्लामिक कैलेंडर के हवाले से देखें तो आज मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है और आज है 10 मुहर्रम। अच्छा, 10 मुहर्रम को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही ज़्यादा फजीलत हासिल है, यानी कि ये एक बहुत खास और नेक दिन समझा जाता है। सो आज आपके पास मौका है, क्योंकि आज फ्राइडे भी है, साथ ही साथ मुहर्रम का सबसे अफजल दिन भी। सो आज ही के दिन आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करें, इबादत करें और अपने इस दिन को खूबसूरत बनाएं, और अपने मकसद को कभी मत भूलें। जो गलतियां हो गई सो हो गई, उन पर तवज्जो ना दें और आगे बढ़ें।

शख्सियत वाले इसने, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे शो का नाम है द डीवा डायलॉग, यानी कि हमारा ये शो डिज़ाइन किया गया है हमारी सभी लवली डीवास के लिए, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं सभी डीवास को पूरी तरह से इंस्पायर करूँ, उनकी क्यूरीज को फुलफिल करूँ और उनके लिए मज़े मज़े के चटपटे खाने बनाऊँ। सो ये लिसनर्स, आप सभी को मालूम है कि ये सेगमेंट हमारे शो का सबसे ज़्यादा इंस्पायरेशनल सेगमेंट है, क्योंकि हम इस सेगमेंट में डिस्कस करते हैं एक ऐसी आइकॉनिक पर्सनालिटी, जो कि एक ऐसी खूबसूरत खातून जिन्होंने ना सिर्फ मुझे बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया को इंस्पायर किया, पूरी दुनिया को मुतासिर किया। तो हमेशा कहा जाता है कि ट्रू ब्यूटी इज़ नॉट अबाउट हैविंग अ प्रिटी फेस, इट्स ऑल अबाउट हैविंग अ प्रिटी माइंड, प्रिटी हार्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अ प्रिटी सोल। चलिए तो लिसनर्स, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे अजीम हस्ती की, यानी कि दुनिया की सारी सारी अगर फीमेल्स देखी जाएं, हम लेट 90s की बात करते हैं, 18th सेंचुरी की बात करते हैं, तो हमें ऐसी ऐसी खूबसूरत कहानियां सुनने को मिलती हैं जो कि हमारी ज़िंदगी के परसेप्शन को एक तरह से हिला कर रख देती हैं, एक तरह से बदल देती हैं। सो आज जैसा कि एक खूबसूरत इस्लामिक दिन है, सो आज के दिन के हवाले से हमारी आज की आइकॉनिक पर्सनैलिटी हैं हज़रत फातिमतुज़्ज़हरा। आज इस आखिरी सेगमेंट में हम उनकी ज़िंदगी के उन सुनहरी पहलुओं को डिस्कस करेंगे जिसके हवाले से हो सकता है आप वाकिफ ना हों। सो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारे प्यारे नबी करीम कि सबसे लाडली, सबसे प्यारी बेटी थी। आपने फरमाया करते थे कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, लेकिन इस अजीम रुतबे के बावजूद उनकी ज़िंदगी दुनिया की तारीख की सबसे सादगी और सबसे इंतहाई सादा ज़िंदगी थी। एंड आइकॉनिक इंग्लिश कोट सेज, ट्रू रॉयल्टी इज़ नॉट फाउंड इन गोल्डन क्राउन, यानी कि असली शाही रुतबा सोने का ताज या चांदी के मुकट के साथ नहीं होता, बल्कि ये किरदार की शराफत और रूह की पाकीज़गी के साथ हमें मिलता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनकी निजी ज़िंदगी के बारे में। सो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की घरेलू ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा सादगी से मुब्तिला थी। वो घर के सारे कामकाज खुद क्या करती थी, चक्की पीसना, पानी भरना और घर की सफाई वगैरह। अच्छा, आज के मॉडर्न लाइफ में अगर थोड़ी सी सहूलत कम हो जाए या थोड़ी सी भी मुश्किल हम सभी पर आन पड़े तो हम कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं कि उफ, हमारी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, ज़िंदगी में कितना रश है, काम का बोझ कितना ज़्यादा है। लेकिन अगर हम इनकी ज़िंदगी को देखें, यानी कि ऐसी खूबसूरत, मशहूर और बावकार हस्ती होने के बावजूद भी उन्होंने खुद एक ऐसी ज़िंदगी को चूज़ किया जो कि नहायत ही सिंपल सादा थी। अब बात करें अगर हम डिग्निटी की, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो दुनिया की सबसे बाहया औरत थी। उनका ये वस्फ आज की औरत के लिए सबसे बड़ा सबक है। आज के इस डिजिटल दौर में जहां हम अपनी पर्सनल लाइफ की छोटी बड़ी हर चीज़ को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का किरदार हमें ये सिखाता है कि प्राइवेसी और मॉडेस्टी एक औरत की सबसे कीमती लिबास होता है। सो अगर आप खूबसूरत बनना चाहते हो, सो यू डोंट नीड टू शो योर स्किन, यू डोंट नीड टू शो योर सेल्फ टू अ लॉट ऑफ पीपल। आप अपना किरदार ऐसा बना सकते हैं, आप अपने आप की शख्सियत को इतना उजागर कर सकते हैं कि आप खुद ब खुद से ही लोगों को दूर से देखने लगें।

इसी के ऊपर मुझे एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही प्यारी सी लाइन याद आ गई, सोचा आप सभी के साथ भी शेयर करती हूँ। सो कहा जाता है कि लेट योर करेक्टर शाइन सो ब्राइट दैट इट इंस्पायर्स अदर टू फाइंड देयर ओन इनर लाइट। इसी खूबसूरती और रूहानी दास्तान के साथ आज की इस मखसूस ट्रांसमिशन का वक्त भी हुआ जाता है ख़त्म। सो इस खूबसूरत सी बात का बेसिकली मकसद ये था कि इंसान को अपने आप में, अपने किरदार में इस कदर काम करना चाहिए, अपने किरदार को इस कदर बुलंद करना चाहिए कि इंसान कहीं पर भी हो, दूर से लोग उसे पहचान लें, लोग उसकी इज्जत करें, उसकी शराफत की गवाही दें। ज़रूरी नहीं कि आप फैशनेबल बनो, मॉडर्न बनो, फैंसी क्लॉथ्स पहनो, फिर ही जाकर आप एक आइकॉनिक डीवा लगो। डीवा बनने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने इनर सेल्फ को खूबसूरत बनाओ। क्यों? क्योंकि जब आपका इनर सेल्फ खूबसूरत होगा, आप अंदरूनी तौर पे खूबसूरत होगे, सो वो जो आपकी खूबसूरती है वो बाहर ज़रूर झलकेगी। एक बहुत कॉमन सा वर्ड है आजकल आप में, हम सभी यूज करते हैं, द वर्ड सेज वाइब। हम कहते हैं कि अच्छा फला इंसान से बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, अच्छा इसकी वाइब मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही। सो बेसिकली वो वाइब भी कुछ इसी तरह से है कि जब आप अंदर से एक बहुत खूबसूरत और बावकार इंसान बन जाते हो, आपकी सोल बहुत खूबसूरत और प्यारी होती है, सो उसका असर आपकी बैरूनी पर्सनैलिटी पर ज़रूर पड़ता है। और तभी जब आप किसी से बात करते हो या लोगों के इर्द गिर्द जाते हो तो आपको ये चीज़ सुनने को मिलती है कि अच्छा तुमसे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, तुम एक बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रही हो। और अगर आप अंदर रूनी तौर पर खूबसूरत ना हो, आपके दिल में जेलसी हो, बुगज हो, हसद हो, दूसरों के लिए कंपैरिजन हो, तभी आप बैरूनी तौर पर भी खूबसूरत नहीं लगते और लोगों को हमेशा आपसे नेगेटिव वाइब्स आती हैं। तो जी लिसनर्स, आज की हमारी इस खूबसूरत सी कहानी, उस खूबसूरत सी दास्तान और इस आइकॉनिक पर्सनैलिटी जिसे हमने डिस्कस किया है, इनका बेसिकली मकसद यही है कि आपको ये चीज़ रियलाइज़ करवाना कि अगर आप चाहती हैं कि आप एक खूबसूरत आइकॉनिक डीवा बने और दुनिया में खुद को मनवाएं, सो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने अंदर को साफ़ करें, फिर देन अपने बाहर को साफ करें, फिर बारी आती है आपके फैशन, आपके कपड़ों पर। तो लिसनर्स, इसी के साथ अभी एक और रिक्वेस्ट आई है हमारे पास एक खूबसूरत से कलाम को शामिल करने की, तो ज़रूर उनकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करते हैं और इस खूबसूरत से कलाम को शो में शामिल करते हैं।

जी तो लिसनर्स, मैंने वो कलाम ढूंढने की कोशिश की, फ़िलहाल तो नहीं मिल रहा। चलें उस कलाम को भी ढूंढते हैं और लास्ट शो में शामिल करूंगी। लेकिन अभी वक्त हुआ है हमारे शो के इख्तितामी मराहिल का। तो जो लिसनर्स, एक बार फिर से यही कहूंगी कि आज का दिन आप सभी के पास एक खूबसूरत चांस है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने पूरे वीक के गुनाहों को माफ़ करवा सकते हैं, ज़िंदगी को एक नए मोड़ से स्टार्ट कर सकते हैं, और सबसे बढ़कर कि अपने गॉड के साथ अपने इस स्पिरिचुअल बॉन्ड को अच्छा कर सकते हैं। सो इसी उम्मीद के साथ शो को इख्तिताम पज़ीर करते हैं। उम्मीद करते हूँ आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। लाजमी मुझे फीडबैक दीजिएगा, लाजमी बताइएगा आपको आज की रेसिपीज़ कैसी लगी, आपने इन रेसिपीज़ को ट्राई किया है, और अगर आपने इन रेसिपीज़ को ट्राई किया तो लाजमी इनकी पिक्चर्स भी मुझसे शेयर करिएगा। एक बार फिर से बता देती हूँ, 01157100971 है हमारे स्टूडियो का नंबर। सो ये वो नंबर है जिनसे आप मुझसे और मैं आपसे कनेक्टेड रह सकती हूँ, एक दूसरे से हम रब्ता कर सकते हैं। सो लाजमी मुझे बताइएगा ओवरऑल बेस के हवाले से आप क्या चाहते हैं सुनना। अगर आपका कोई फेवरेट टॉपिक है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, ज़रूर शो में शामिल किया जाएगा, आपकी तमाम तर रिक्वेस्ट को ज़रूर फुलफिल किया जाएगा। एक बार फिर से बता देती हूँ, radiofaza.com.uk है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट के थ्रू आप हमें ट्यून कर सकते हैं, साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि आपका फेवरेट आरजे किस वक्त, किस दिन, किस टाइम पर ऑन एयर होगा। सो आप हमारी एप्लीकेशन रेडियो फजा 97.1 FM को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये वो सभी तरीके हैं जिनसे आप मुझसे और मैं आपसे जुड़ सकती हूँ। सो जो लिसनर्स, इसी खूबसूरत से बात के साथ, इसी उम्मीद के साथ शो ख़त्म हो रहा है, लेकिन आपका दिन, आपकी सुबह अभी बाकी है। सो कोशिश करिए कि अपने इस दिन को, इस सुबह को खूबसूरत बनाएं, हर दिन को मीनिंगफुल बनाएं, क्योंकि हमारा इस दुनिया में आने का कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। बिना मकसद के तो हर चीज़ बेकार और अधूरी लगती है। सो आप भी अपने इस मकसद को ज़रूर जांचिए, ज़रूर पहचानिए, और मुझे अपनी होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा को दें इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट शो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े तमाम तर लोगों का ख्याल रखें, और जाते जाते इस खूबसूरत से कलाम को सुनते हुए जाएं। सो डियर लिसनर्स, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रابطہ करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715299779 और विजिट अस एट
8: hayatweddings.co.uk।
9: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
10: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM।

बड़ी ही प्यारी बात प्रोग्राम में किसी ने शामिल करवाई है, लेकिन मैं नाम नहीं ले सकती प्रोग्राम उनका। अपने वादे पूरे करो, बेशक वादे के बारे में पूछा जाएगा। और अच्छी बात है, इसको पूरा करना भी चाहिए। किसी से आपने किसी भी तरह का वादा कर लिया तो उसको ज़रूर पूरा करें। और वादे से याद है, मैं अभी एक जगह वादा करके आई हूँ कि मैं आपके घर आऊँगी, लेकिन मैं अभी तक गई भी नहीं, बस टाइम नहीं होता ना मेरे पास। बिजी वूमेन, वूमेन बिजी ही अच्छी लगती है मेरे ख्याल में। और मुझसे पूछा गया था वर्किंग वूमेन या फिर हाउसवाइफ, तो उस टाइम पे मैंने चूज़ किया था वर्किंग वूमेन। लेकिन अब वर्किंग वूमेन आप तभी तक हैं जब तक आप अपने पेरेंट्स के घर में हैं, लेकिन शादी के बाद आप एक हाउसवाइफ ही बनकर हैं तो अच्छी बात है।

आज मैंने सोचा कि थोड़ा डिफरेंट सा टॉपिक जो है वो शामिल करूं, बट अभी एक अचानक से मैंने कुछ मैसेजेस निकाले, लेकिन आज के दिन के हवाले से जो मेरे सामने एकदम से बात आ गई, तो मैंने सोचा क्यों ना उसके हवाले से डिस्कस की जाए आपसे। दौलत इंसान को आर्जी तौर पर बड़ा बड़ा करती है, लेकिन इंसानियत और अच्छा अखलाक इंसान को हमेशा बुलंद दर्जे पर रखता है। सो वही बात आ गई कि भाई हम पैसे के लिए एक इंसान की इज्जत करते हैं, जब उसके पास पैसा नहीं होगा तो बस ख़त्म। वो कहते हैं ना कि अगर अमीर इंसान की बात की जाए, तो अगर तुम्हारी ज़िंदगी में से इस पैसे को निकाल के साइड पे कर दिया जाए तो तुम्हें खोखली खोखली शख्सियत रह जाओगे। सो पैसे से इंसान को जज ना करें, दौलत से इंसान को जज ना करें, अच्छा अखलाक रखें। इंसानियत जो है वो अच्छा अखलाक हमेशा जो है वो उसको बुलंद रखता है। सो अहलाक आपका जो है ना वो मायने रखता है कि आप कैसे हैं कैसे नहीं। सबसे अच्छे से बात करें, हंस के बात करें, लेकिन किसी भी तरह की किसी के दिल में किसी भी तरह की उम्मीद ना लगवाएं, क्योंकि उम्मीद जब टूटती हैं तो फिर बहुत दुख होता है। और उस इंसान के लिए तो मैं कहती हूँ इस चीज़ का एक सबक ही है कि यार अगर तुम्हारा दिल किसी के थ्रू टूटा तो तुम किसी का दिल मत तोड़ो। वो हिसाब है ना कि वो मतलब ये गाड़ी चल रही है, और ये गाड़ी इस तरह चल रही है कि मैं उसके पीछे, वो किसी और के पीछे, और जो जिसके पीछे वो किसी और के पीछे भी। मैंने कहीं सुना था मतलब आप जिसके पीछे भाग रहे होते हैं ना वो आपका नहीं होता, लेकिन जो आपके पीछे भाग रहा होता है आप उसको कबूल नहीं करते। दिल की बात है, दिल आके कबूल करता भी नहीं है। लेकिन कोशिश ये करें कि आप भाई इस भरी दुनिया में दिल ना लगाएं, क्योंकि ये दुनिया फानी है। दुनिया वाले एक धोखा है, और ये धोखा इंसान को कभी ना कभी ज़िंदगी में मिलता ही मिलता है। सो कोशिश करें कि खुद भी इन धोखों से बचें और दूसरों को भी बचा के ही रखें, और ताकि आपकी आने वाली ज़िंदगी जो है वो अच्छे से गुजरे। ज़िंदगी में कभी भी किसी के साथ बुरा बर्ताव ना करें, क्योंकि मकाफात में बहुत बुरी चीज़ है। और ये फिर एक दिन जो है ना वो सामने आता ही आता है, मकाफात में होता नहीं है। मतलब अगर आपने अपनी दुनिया में किए गए गुनाहों की माफ़ी मांग लिया ना, मतलब अगर आपने कोई गलती दुनिया में की है तो आपको उसकी यहाँ पे ही माफ़ी मांगनी पड़ेगी, या आपको सजा भुगत के ही जाना पड़ेगा। सो आपके गुनाहों की सजा आपको यहीं पर ही मिलती है, जो कुछ आपने किया है वो भुगत कर ही जाना है। सो कोशिश ही करें कि अच्छे से अच्छे काम करें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी के साथ बुरा बर्ताव ना करें। कल को हो सकता है कि आपके सामने वो चीज़ आ जाए, बट अल्लाह ना करे ऐसा कभी कुछ हो। लेकिन मेरी माँ मुझे एक बात सिखाती है कि पर्दे रखना सीखो। अगर हम किसी के पर्दे रखेंगे तो कल को हमारा पर्दा भी रखा जाएगा, और बेशक बेटी वालों के तो अल्लाह ताला पर्दे रखते ही रखते हैं। लेकिन अगर आपने किसी को रुस्वा कर दिया तो आप सात कमरे पीछे ही क्यों ना बैठे हों, आपको भी रुस्वा कर दिया जाएगा। सो कोशिश करें कि दूसरों के दिल पर जो है ना वो राज करें, ना कि आप वो आपको बुरे मतलब लफ्ज़ों में याद करें। इस चीज़ से थोड़ा ख्याल करें। सुबह प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हम एक खूबसूरत से कलाम के साथ। आई डोंट नो इसको कलाम कहा जाएगा कि क्या कहा जाएगा, बट आइए सुनते हैं इसके उस पर रहेगी आपसे मुलाकात। सो डोंट गो एनीवेयर, अभी तक के लिए स्टे ट्यून्ड 107.1 FM एंड ऐप।

सो उसी के साथ साथ फिर भी हमें आपके साथ लगे रहेंगे और कलाम भी शामिल करते रहेंगे। एक और छोटी सी फरमाइश हमारे पास मौजूद है, लेकिन उसको शामिल करने से पहले आपको इतना बता देते हैं कि वो फरमाइश जो है वो हमसे की गई है, हमें पाकिस्तान से सुन रही हैं नूर ने फरमाइश की है भाई कि मेरी मर्ज़ी का भी कलाम लगा दीजिए। तो क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं लगाना, आपकी मर्ज़ी ही तो पूरी करने आते हैं हम यहाँ पर।

करते हैं तो इस तरह से करें कि एक हाथ को दें और दूसरे हाथ को पता भी ना चले। वो कहते हैं ना, नेकी कर कुएं में डाल, वो वाला हिसाब करें। अगर किसी की मदद करते हैं तो लोग शौक बनाना शुरू नहीं कर देना, डिश बनानी शुरू नहीं कर देनी, ये किसी को बताना नहीं है कि मैंने फलां की मदद की थी उस टाइम पे, फलां के साथ मैंने हमदर्दी की थी, ये चीज़ नहीं करनी है। और हमदर्दी किसी से लेनी भी नहीं चाहिए, मेरा तो यही ओपिनियन है कि जब आप किसी के सामने अपने दुख रोते हैं, अपने रोने रोते हैं, तो वो इंसान आपको एक तो एडवाइस भी देता है और दूसरा ये कि वो दूसरे इंसान को जाकर बताएगा, ज़रूर बताएगा, तीसरे इंसान को बोल के बताएगा कि वो इंसान, वो बंदा तो मेरे आगे इतना रो रहा था या ऐसा है। तो सो कोशिश करें कि अपनी बातें सिर्फ अपने तक रखें, किसी के आगे रोने से कुछ नहीं होना। रब के पास जाएँ, रब की ज़ात जो है वो आपको देने में जो है सबसे पहले होगी, और देर वही बात, जाहिर सी बात है, वही बात आ गई कि उसके देने में देर है लेकिन अंधेर नहीं। दुनिया वालों के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है कि आप अपने रब की बारगाह में जाएं, एक सजदा करें, दो नफल पढ़ें, और वो आपको खुद बहुत क्या नाम है बुलाएगा। मतलब हम एक वही, जब हम किसी के घर जाना छोड़ देते हैं और काफ़ी टाइम बाद वहाँ जाते हैं तो हमें यही कहा जाता है कि हूँ तुम्हें याद आ गई साढ़े घर आने दी। मतलब यार, एक तो एक इंसान आपकी तरफ आया है और दूसरा आप उसको ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन एक रब की ज़ात, रब का घर, अल्लाह ताला के पास जाना एक ऐसा है कि जो आपको टोक नोक नहीं करता, जो आपके ऊपर तंज नहीं करता कि भाई बंदे अब आ गए तुझे मेरी याद। मतलब एक वही दर है जहाँ पे बार बार मांगते हैं शर्म नहीं आती, एक वही दर है जहाँ पे देर से भी चले जाओ तो वो यही कहता है कि यार आया तो है ना, तो आ जाना ही काफ़ी होता है। तो बेशक वो देने वालों में से है, सबकी खुशी का ख्याल रखता है, सबका ख्याल रखता है, लेकिन हम उसको खुश करने में कहीं ना कहीं से जो है ना वो कर देते हैं कोई ना कोई मिस्टेक। सो रब को खुश रखें, दुनिया वाले खुश कभी भी नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। अपने रब की ज़ात के साथ दिल, रब के साथ दिल लगाएं, क्योंकि उसने तो पहले ही बोल दिया कि दुनिया तो फानी है, दुनिया तो ख़त्म हो जानी है, दुनिया में दिल लगाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन मैं इस चीज़ पे थोड़ा करती हूँ कि अगर दिल बना, किसी के साथ लगाना नहीं है तो दिल बनाया क्यों है। फिर मुझे किसी ने बोला कि ये किस्म का टेस्ट है कि आप अल्लाह की तरफ जाते हो या उस बंदे की तरफ जाते हो। लेकिन फिर वही बात आ गई कि वो एक इंसान के साथ आपको इतना अटैच कर देता है, इतना जोड़ देता है, फिर वो आपको उससे दूर करता है, और दूर कर लेने के बाद पूछता है कि अब बता के तेरे साथ कौन है, मेरे सिवा तेरा कौन है। और दुख का एक ये बड़ा फ़ायदा है कि वो हमें रब के करीब कर देता है, वो हमें रब के साथ बहुत बहुत करीब कर देता है और क्लोजनेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। बट हमारे लोगों का ये मसला है ना, हमारा अशरफ उल मुल्कात का ये एक बुरी आदत है कि वो सिर्फ मुश्किल में ही रब को याद करती है। वैसे नहीं याद करना, मतलब अगर कोई मुश्किल आई है तो रब को याद करना, लेकिन कोई छोटी सी खुशी भी आ जाएगी ना तो रब को याद नहीं करेंगे। सो कोशिश ये करें कि अगर आप दुखों में आपने अपने साथ अपने रब को पाया तो खुशी का हकदार भी फिर वही है ना यार। मतलब आप लोग कहते हैं कि जो इंसान आपके दुख में आपके साथ है, खुशी का हकदार भी वही है। सो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर दुख में आपके साथ कोई भी नहीं था, आपका सिर्फ रब था आपके साथ, तो फिर खुशी का हकदार भी तो वही हुआ ना यार। उसको टाइम दें, उसके साथ गप लगाएं, उसके साथ बातें करें। दुनिया में कुछ भी जो है ना वो, मतलब दुनिया जो है वो फानी है, यहाँ पे किसी भी तरह की बात जो है ना मेरे ख्याल में उस तरह से नहीं है। बट खैर, दुनिया है, फिर इंसान को धोखा मिलना है और इंसान को अक्ल आनी है, तब भी उसने रब के पास लौट कर वापस जाना है। हकीकी बुलंदी वो है जिसमें इंसान अपने अहलाक और इंसानियत को बरकरार रखे। सो इंसानियत को हमेशा बरकरार रखें, क्योंकि ये बहुत ही कीमती चीज़ होती है। खैर, और इसी के साथ साथ गपशप का सिलसिला आपके साथ जारी रहेगा। प्रोग्राम में एक छोटे से कलाम को शामिल करते हैं, इस कलाम के उस पर रहेगी आपसे मुलाकात। सो अभी तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 FM एंड डैप। मिलते हैं इस कलाम के उस पर।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजा 97.1 FM के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, आवाज़ आप सुन रहे हैं सलूराज की। सलूसी के साथ साथ प्रोग्राम में एक छोटा सा कलाम शामिल किया था, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आया होगा। देखिए मैं उसी के साथ साथ उसी के साथ साथ एक और छोटी सी फरमाइश हम तक मौजूद है, लेकिन अभी के लिए उसको प्रोग्राम में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि प्रोग्राम में हायर होने लगी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। सो फिर ये ना हो कि कमर्शियल ब्रेक हायर हो जाए और फिर आपका वो ट्रैक भी ना पूरा और आई एम सो सॉरी आप वो कलाम भी ना पूरा सुन पाए। हाँ, लेकिन हम आप तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं क्योंकि हमारी आवाज़ भी इतनी कोई बुरी नहीं है, मतलब बुरी तो है ही नहीं है ना यार, हम इतना प्यारा बोलते हैं। प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और मैंने आपको टॉपिक बताया था, उसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंचाना चाहे सो वो भी पहुंचाइएगा, या फिर कोई खूबसूरत सा मैसेज किसी प्यारे के नाम करवाना चाहें, या कोई कलाम अपने लिए प्ले करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं, या फिर कोई नसीहत अपने आप को ही देना चाहें तो वो भी मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर दूंगी, बल्कि डांट के दूंगी। आप यही समझिएगा कि मैं आपकी टीचर हूँ। सो टीचर जो है ना वो गुस्से से भी जो है ना वो समझाती है। ऐसे मुझे बताइएगा, एक छोटा सा सवाल करती हूँ आपसे कि ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ हुई है जो आप सोचते हैं, जो आप कहते हैं कि वो चीज़ अब दोबारा ना हो। अब वो किसी तरह की भी बात हो सकती है, मैं पॉइंट नहीं करी है कि चीज़ को, बट आप समझ गए, आप समझदार हैं और वैसे भी जो सलूराज के लिस्टर्स हैं ना ये तो समझदार ही हैं, बट आपने करना ये है कि बस मुझे मैसेज करके बताना है वो बात जो आप चाहते हैं कि वो दोबारा दुनिया में आपके साथ वो चीज़ कभी भी मत हो। नंबर आपको नोट करवा देती हूँ जिन नए लोगों ने आज रबी फजल 97.1 FM को ट्यून किया है, बेशुक्रिया आप तमाम समातों का। नंबर नोट कीजिएगा 01157100971। इस खूबसूरत नंबर को करना है सेफ, और सेफ कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज करना है और बताना है, पैगाम पहुंचाना है अपना, और अपनी आवाज़ भी हम तक पहुंचा सकते हैं। इसी नंबर पे आपने मुझे मैसेज करना है और कॉल लाइव कॉल के थ्रू भी आप मैसेज प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। ना सिर्फ मैं अपनी आवाज़ आपको सुनूंगी बल्कि आप भी मेरी आवाज़ को सुन सकते हैं।

सवाल कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, जो भी करना है कीजिएगा, मौजूदगी का एहसास ज़रूर दिलाइएगा। अभी के लिए प्रोग्राम में जो है वो एक छोटी सी चुनु मुनु सी कमर्शियल ब्रेक होने लगी है, लेकिन आप अपने मैसेज मुझ तक पहुँचाइएगा। जैसे ही आपका मैसेज मेरे काका कंप्यूटर की स्क्रीन पर जगमगाएगा, सो मैं फ़ौरन से छट से उसको प्रोग्राम में शामिल कर दूँगी। निराश आपको मैं कर नहीं सकती, सो दिक्कत मुझे कोई है नहीं, और आपने परेशान नहीं होना। सबसे पहली बात यह है कि घबराना नहीं है। अभी के लिए प्रोग्राम में जो है कमर्शियल ब्रेक को ऐड कर देते हैं, और फिर उसके बाद आपसे रहेगी मुलाकात। सो स्टे ट्यून, अभी तक के लिए कहीं नहीं जाना, जुड़े रहना है वजह के साथ विद सलूराज। बट फिर से प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च, आवाज़ आप सुन रहे हैं सलूराज की। मिलते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के इस बार।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
10: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
11: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो फजल 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। सोलोजी के साथ साथ प्रोग्राम में हाल हो चुकी थी एक छोटी मशहूर ब्रेक, मशहूर ब्रेक बाद वही आपसे मुलाकात, और वक्त हुआ जाता है फरमाइशें पूरी करने का। और लेकिन अभी के लिए जो है वो प्रोग्राम में बस फरमाइश मौजूद है, लेकिन अभी मैं उसको शामिल नहीं करूँगी। मैंने सोचा कि एक छोटा सा प्रोग्राम जो हम तक पहुँचाया गया उसको प्रोग्राम में शामिल कर दें। भाई मुझे मैसेज किया गया है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? सलूराज सलूराज एकदम फिट फाट आपके साथ। और कल आप बता रही थी कि आपके गले में दर्द है। ओहो, सो मतलब सो क्यूट यार, आपने अभी तक याद रखा कि मेरे गले में दर्द था। खैर अब ठीक है, ठीक है तभी तो आपके साथ बोल रही हूँ। वैसे भी अगर आप जैसी खूबसूरत प्यारे प्यारे लोग मुझे सुनने के लिए बैठे हुए हैं तो फिर मैं क्यों नहीं बोलूँगी।

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब। यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब। यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात Faza 97.1 FM और DAB पर।
1: You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात Faza 97.1 FM और DAB पर।
1: You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापिस नहीं आती।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो वजह के लाइव स्टूडियो से। के साथ साथ सल्लू थोड़ी सी ना गायब हो गई थी, गायब नहीं हुई थी भाई, मैंने ना वो एक कलाम शामिल कर दिया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको सुन लिया जाए। पहले आई थिंक कि मैं किसी का मैसेज प्रोग्राम में शामिल कर रही थी, लेकिन मुझे याद कोई नहीं है कि किसका था। आई डोंट नो, खैर कर तो दिया था मेरे ख्याल में मैंने। हाँ, तो कल हम बात करते हैं ट्रैक्स की, कि ट्रैक किसी के मतलब किसी ना किसी बनाया जाता है। जैसे तलहन ने उनकी बात की थी कि वो जो ट्रैक बनाता है तो वो एक तरफा मोहब्बत होती है तो बना देता है, तो मैं इनकी बात करी थी कि ये जो कलाम है लजपाला दिलाड़ लग गया, तो ये किस लड़की के लिए बना होगा, मतलब वो कौन होगी वो खूबसूरत शख्सियत, कौन होगी वो अजीम लड़की जिसके लिए ये कलाम बना, जिसको सोच के इस कलाम को बनाया गया।

अच्छा अच्छा कहते हैं कि जब आप किसी से पहली मुलाकात करते हैं ना, तो उस टाइम पे ना कोई गाना सुने, ना कोई किसी भी तरह की कोई चीज़ ना सुने, उस जगह पे मुलाकात करें जिस जगह पे आप दोबारा जा ना सके। हो सकता है कल को आप जब उस जगह पे जाएं या फिर कोई उस तरह का कलाम या ट्रैक जो भी है उसको सुने, तो आपको वो गुजरा हुआ टाइम याद आए। तो अभी मैंने इसको सुना तो इस कलाम को, तो मुझे भी अपना गुजरा हुआ टाइम याद आया। मतलब मैं एक टाइम में थी अपने फ्रेंड्स के साथ, तो इस कलाम को बहुत ज़्यादा सुना मैंने, और सुना तो है बट अब मुझे जो है ना वो पुरानी इमेजिनेशन आ रही है कि यार मैं उस टाइम पे इसको सुना था और ये था, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। वही बातें यादें पागल कर देती हैं। सो जो टाइम है जिसके साथ हैं उसको अच्छे से गुजारें, क्योंकि वक्त जो है वो हाथ से निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। एक वक्त जो है गुजर जाए तो फिर वापस नहीं आता, याद ही रह जाती हैं। सो सबके साथ अच्छी यादें बनाएं, अच्छा टाइम स्पेंड करें, बिना किसी लालच के, बिना किसी उम्मीद के।

0: मेरे ख्याल में ये रब की, रब का जिक्र हो रहा है और एक कुछ इंसान का जिक्र हो रहा है जो रब के अलावा किसी के पास नहीं जाती या किसी के पास नहीं जाता जाती है मेरे ख्याल में। सो वेल, आइए इसी के साथ जो है ना वो अभी मैं बताने लगी थी, अनाउंस करने लगी थी कि प्रोग्राम में जो है वो काफ़ी कम वक्त रह चुका है, अभी शायद आधा घंटा रह चुका है या सो वेल, अभी के लिए जो है ना वो प्रोग्राम में एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक भी हाल होनी है। अगला सेगमेंट मैं रखती हूँ ट्रैक्स का और कलाम का। जुमे के दिन जो है वो हम कलाम ही शामिल करते हैं, मोस्टली नहीं मतलब टाइम के हिसाब से कलाम ही शामिल किए जाते हैं। टाइम पे डिपेंड करता है कि किस टाइम पे जुमे का दिन है या मतलब जुमे का टाइम चल रहा है या कौन सा टाइम है, सो उस टाइम पे जो है हम कलाम ही शामिल करते हैं। खैर अभी जो है वो मेरे पास फरमाइश भी आई थी एक कलाम की, एक ट्रैक की, सो अभी मैं ट्रैक को शामिल नहीं कर सकती क्योंकि टाइम ऐसा है। सो कलाम को ही प्ले करवाना चाहें सो वो करवा सकते हैं प्रोग्राम में शामिल होकर, बता दीजिएगा। अभी के लिए प्रोग्राम में जो है वो हाई होने लगी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक के बाद रहेगी आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून फजा 97.1 FM एंड ऐप, अभी तक के लिए कहीं नहीं जाइएगा, जुड़े रहना है फजा के साथ विद सलूराज।
1: Commercial time. Hello Nottingham, we urgently appeal for a stem cell donation for a dedicated local doctor and a young father who is fighting for his survival. He urgently needs a life-saving stem cell transplant. Tragically, his South Asian match hasn't been found yet. We are appealing to entire South Asian community to please come forward and help this father. We are hosting a donor drive at the ICCA Center on Hucknall Road on Wednesday, 27th May between 6 p.m. and 7:30 p.m. All it takes is a simple 2-minute cheek swab. Please come forward and I hope to see many of you on Wednesday, 27th May. Thank you.
2: What happened? You look very happy.
3: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
2: Congratulations. That was very quick.
3: I was very lucky. I used the local visa experts.
2: Who helped you with the application?
3: AMH solicitors. They were brilliant, friendly, fast and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain and citizenship applications.
2: Where is AMH solicitors based?
3: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
2: Brilliant. I will contact them to help my family's visa.
3: Sure. Their number is 0115-671-3677 and they are in Pure Gym building. So, parking is available and they also offer free initial consultation.
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available or call them on 0115 671 3677.

शायद मुझे भूख लगी है इस वजह से। खैर शामिल करते हैं कोक स्टूडियो सीजन 11 आपदा परवीन की आवाज में। अभी मैंने आपको आपदा परवीन की आवाज सुना देनी है, फिर आपने देखना फरमाइश जो मेरे पास आनी है वो भी इन्हीं के कलाम की आनी है। मतलब मुझे कुछ लोग कहते हैं कि आप अपने प्रोग्राम में आपदा परवीन की आवाज को बहुत ज्यादा शामिल करती हैं, लेकिन इतना ही बता दूं तो मुझे इनकी आवाज पसंद है। दूसरा ये कि मैं प्रोग्राम में इनके कलाम को शामिल कर देती हूँ ना, फिर बस फरमाइशें भी इन्हीं के कलाम की आती हैं। सो वेल आइए सुनते हैं इस कलाम को, मिलते हैं इस कलाम के उस पार। सो स्टे ट्यून फजल 97.1 FM एंड डैप, मिलते हैं इस कलाम के उस पार।

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on

0: जी हाँ, तो वन सेकेंड वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनती हुई समाजों को रेडियो 97.1 FM के लाइव स्टूडियो से। बुजुर्ग के साथ साथ प्रोग्राम में वक्त हो जाता है अब ख़त्म। अब आपको मुझे देनी होगी इजाज़त। अपना बहुत सारा बहुत बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। मिलेंगे वीकेंड के बाद। वीकेंड पे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है आप जल्दी से डिसाइड कर लीजिएगा। फिर वीकेंड के बाद मंडे वाले दिन जो है ना आपके आपसे डिस्कस स्टार्ट करेंगे आपके वीकेंड के बाद से कि आपका वीकेंड कैसा गुजरा।
1: क्या ऊंची शान है अल्लाह।
0: सवाल मुझे दीजिए इजाज़त कल तक के लिए नहीं बल्कि दो दिन तक के लिए। सो ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगेबान।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 011591168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
8: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: हेलो सुमान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioche straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. We are playing
12: Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM।
15: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात।

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।
2: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
3: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर।
2: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
3: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
0: बिगर बिगर एंड बेटर बेटर द रेडियो स्टेशन फॉर पीपल हु लव म्यूजिक। 97.1 FM।

नॉटिंघम का वेदर है आज 34 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि इंतहाई गर्मी को वाजे कर रहा है। आइए फारसी में एक कसीदा सुनते हैं।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिंग रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: You are listening 97.1 FM।

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM।

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
2: ये कैसा सफर है, ये कैसी जुस्तजू, जमीन पे चलते हैं आसमान को देखते हैं, हो या मौला हक इलाही.

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG3 5QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
10: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
11: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब। यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब। यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
10: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
12: अगर तुम

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापिस नहीं आती।

डरा है तूफानों से, ये तो तेरी उड़ान का इम्तिहान है। सिर्फ सांसे चलने का नाम जिंदगी नहीं, गिरते हुए संभलने का नाम जिंदगी है। बिखरता है वही

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.

लिखे न कोई और लिखार, ये कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार। तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर आ मगर चलती वही है जो चाहता है किरदार।

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।

0: लो खिर्द की बातें छोड़ी, मन की डोरी उससे जोड़ी, इल्म किताबी भूल गई।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
8: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
9: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर।
8: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
9: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर।
8: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 एफएम और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 एफएम एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 एफएम और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 एफएम एंड डैब। यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 एफएम एंड डैब। You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर।
2: ये कैसा सफर है, ये कैसी जुस्तजू, जमीन पे चलते हैं, आसमान को देखते हैं, या मौला हक इलाही।

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB.

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. We are playing.
12: Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM।
15: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB।
16: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते सुहागा ए कि ओ हर तरह दा वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंगम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तुम मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप, फिल्मी गाने,

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।
2: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
3: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर।

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापिस नहीं आती।

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
2: ये कैसा सफर है, ये कैसी जुस्तजू, जमीन पे चलते हैं आसमान को देखते हैं, हो या मौला हक इलाही.

यह कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार, तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर आ मगर चलती वही है जो चाहता है किरदार। Phantom of Music.

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड ऐप।
3: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैप।

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
6: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315066. मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
7: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
8: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
7: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
8: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
7: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
8: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
7: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
9: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
7: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
10: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
11: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
12: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 0771522।
13: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी, वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: This is a public service announcement.
8: The station.
9: That plays.
10: Foot tapping music.
11: Huzzah 97.1 FM.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप।
13: You are listening to Radio Fazza on 97.1 FM.

tilki umange hai jawan rang mein tu bahai sama

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are safe. We are playing
12: Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM।
15: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ?
16: You're listening to Radio Faza 97.1 FM. Enjoy songs from legendary singer Kishore only in Dedication Hour.

0: बताओ हमको
1: डूब मरो
0: डूबेगा नहीं तरेगा छप छप छप छप छप छप छप डूबेगा नहीं तरेगा प्यार से हम नहीं डरेगा चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना अजी हम तो मोहब्बत करेगा दुनिया से नहीं डरेगा चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना अजी हम तो मोहब्बत करेगा।
2: आपके दिल की धड़कन रेडियो फजा 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
2: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baysford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तू मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप, फिल्मी गाने,

0: Yep, here, English or Arabic. तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM.
0: हो गया ना कमाल.
2: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा. रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ. अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें. मेरा नाम है रेडियो फजा.
3: You are listening to Radio Faza 97.1 FM. Enjoy songs in mesmerizing voice of legendary singer Kumar Sanu. Only in Dedication Hour. Kumar Sanu.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: यू आर लिसनिंग टू 97.1

0: सुनते रहिए रेडियो फजा 97.1 FM।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रابطہ करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
5: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
6: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
8: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715-299-779 और विजिट अस एट
9: hayatweddings.co.uk।
10: यू आर लिसनिंग टू रेडियो फजा 97.1 FM। एंजॉय सॉन्ग्स इन मेस्मराइजिंग वॉइस ऑफ लेजेंडरी सिंगर कुमार सानू, only in dedication hour. Kumar Sanu.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG3 5QS।
10: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: सुनते रहिए रेडियो फजा 97.1 FM।
12: यू आर लिसनिंग टू रेडियो फजा 97.1 FM। एंजॉय सॉन्ग्स इन मेस्मराइजिंग वॉइस ऑफ लेजेंडरी सिंगर कुमार सानू, ओनली इन डेडिकेशन आवर। कुमार सानू।